ब्यूटी इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रहा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लग रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलते ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो BramptonCashandCarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसलिए तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तों लैके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच ते डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो कि तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, आज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton.

ढोलक चाहिदा होए, ढोलकी चाहिदी होए, जागो चाहिदी होए, या कोई गिद्दे पंगड़े दे ड्रेस चाहिदे होन, कोई मॉडल चाहिदे होन, तुहानू ब्रम्पटन कैश एंड कैरी तो मिल सकता है। 905-200-4800 100 कैनडी रोड 60,000।

कि तुसी सब ठीक ठाक हो, एंजॉय कर रहे हो इस बड़ी प्यारी बड़ी मिठी बड़ी खूबसूरत शाम नू। शाम दे विच एक बार फिर थोड़े नाल जुड़ चुके हैं, रौनक मेला लाने सजाने अज की इस सोहनी जी शाम नू। ते अज तां वैसे पूरा दिन रौनक लगी रही, जिहड़े हिसाब नाल ट्रैफिक स्कूल बसेस देख के यार चा बड़ा चढ़िया। जिथे भी जाओ जिस मोड़ ते वड्डियां स्कूल बसेस छोटिया स्कूल बसेस बच्चे बैठे, कई हस रहे कई रो रहे। चलो जिंदगी दे विच हुंदा कई वार ना भी एक्साइटमेंट बहुत हुंदी है कई नूं, कई कहिंदे आ कि असीं तां भी निकलना नहीं। सो आई होप, उम्मीद करदे आ कि अज बच्चिआं दा बैक टू स्कूल दा पहला जिहड़ा दिन सीगा वधिया रिहा होवेगा। खूब बच्चिआं ने अपने टीचर्स नाल पहले दिन मिल के इंजॉय भी कीता होवेगा, फ्रेंड्स कई मिले पूरी समर। हम देखो एक तो गल जरूर है कि बच्चे जदों अपने यारां दोस्तां तो दूर रहिंदे आ ना, फिर थोड़े बच्चे नूं भी हुंदा कि स्कूल आवे ते असी अपने फ्रेंड्स नाल मिलिए, ते ओ जिहड़ियां मोमेंट्स ने उन्हां नूं थोड़ा इंजॉय करिए, हसीए खेडिए। सो खैर, जस्ट हैव अ ग्रेट टाइम। ते सवेरे भी मैं कहा सी कि बच्चे नूं बेस्ट विशेस, ते हुण शाम नूं भी आपां इक वार फिर तो कह रहे हैं कि बच्चे सारे खूब इंजॉय करन। सो स्टूडियो दा अपना नंबर है 905-600-7373-33337, अपना फोन नंबर है 905-600-7337। गल्लां बातां करदे आं ते अज दी इस खूबसूरत ईवनिंग नूं आपां इकट्ठे मिल के इंजॉय करदे आं। कोई भी गीत संगीत सुनना, दो तीन तरीके ने, या तां सानूं तुसीं कॉल कर लो स्टूडियो च, या साडा इंस्टाग्राम पेज है पंजाबी लहरां PUNJABILEHRAN, इंस्टाग्राम पंजाबी लहरां, उत्ते एनी टाइम मैसेज कर सकते हो प्रोग्राम के दौरान। मैं चैक करता रहना भी कि मैसेज आया कि नहीं, अजकल तो नोटिफिकेशन ऑन कर दो तो कोई ना कोई मैसेज आ जाता यार कि थोनों इस बंदे ने मैसेज किया उसने किया। सो इंस्टाग्राम पेज इज पंजाबी लहरां PUNJABILEHRAN, उसे प्रोग्राम के थ्रू आउट सानू एनी टाइम मैसेज जरूर पा सकते हो। होर सुनाओ ठीक ठाक हो, लोंग वीकेंड किदा रहा? एक तो लोंग वीकेंड तो बाद बैक टू रूटीन, ते वो भी एडी वड्डी रूटीन जो स्कूल शुरू हो जाते हैं बंदे नूं थोड़ा जिहा मुश्किल तो एक दिन तुहानूं फील होगा, बट कोई ना ह्यूमन आप थोड़े जे हो जाएंगे यूज टू, अज थोड़े टाइम नाल पै जाओ, नहीं तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे बस चल सो चल सी, हाईवेज बिजी, कोई नायगरा फॉल गया, कोई मस्कोका गया, कोई डाउनटाउन टोरोंटो गया, ते बस रौनक लगिया नहीं है। हुण थोड़ा जिहा लगेगा यार सुन सुना जिहा, क्योंकि थ्रू आउट जिहड़े दो महीने लंघे आ लगता नहीं सी भी कोई काम काज भी ने यही सीगा कि कदे कोई विआह दा फंक्शन उहदा सद्दा आ गया, कदे कोई बर्थडे पार्टी उत्थे चले गए, कदे यारां दोस्तां ने बुला लिया कि आजो बारबीक्यू करिए, ते हुण सारे आराम नाल बह जाणगे चुप करके कि थोड़े जिहड़े इह हुण तीन चार महीने ने या दो चार महीने ने अपने क्रिसमस तक थोड़ा दब के मेहनत करिए। सो प्रोग्राम पंजाबी दा है, बड़ा टाइम सी उदों की

0: क्या बात है जी, 5480 हेलो।
1: हाँ जी सर, गुड इवनिंग, की हाल है?
0: वधिया सर।
1: सर एक नंबर लाना थोड़ा, फेवर तो करो, विंडोज बनांदे आगे उन्हें दी ऐड आंदी सी अपने इत्थे।
0: विंडो वाले दा नंबर लिख लो जी।
1: हाँ जी
0: 647।
1: हाँ जी
0: 926।
1: हाँ जी
0: 0047।
1: थैंक यू वेरी मच सर। एक इत्थे
0: जिथे तुसी कहोगे भाजी पहुंचदे कर देंगे।
1: थैंक यू वेरी मच सर।
0: नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एंड कोई भी नंबर लेने होंदे आ जी सदके, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम। एक तां साडा इंस्टाग्राम पेज है पंजाबी लहरां, उत्ते मैसेज कर दिया करो जे कोई नंबर चाहिए, या सानू तुसी आराम नाल फोन घुमा लिया करो ते असी बिल्कुल थोड़े लिए हाजिर है। ओके, अपने ना व्यामा ते बहुत बार खाना पीना चलो वेस्ट होंदा। एक बंदा ओ किसी व्याह ते गया ते ओ ना नाल कंटेनर लै गया, कंटेनर लै गया ते उन्हें चलो जी कंटेनर दे विच खाना सीगा पाके घरे लै गया ते बड़े लोकां ने उस चीज़ नू कितना किते क्रिटिसाइज कीता कि यार तू व्याह ते आया ते तू खाना लैके जा रहा घरे की चंगा लगता है? जिन्ना खाना उत्थे खा इहदा मतलब इह थोड़ा भी तैनू किसी ने सद लिया ते तू डब्बा भर के या कंटेनर भर के घरे लैके जा। कई लोग फिर भी चलो कहिंदे यार फिर की हो गया, जे जिहदा जिहड़ी फैमिली दा विआह सी उहनां ने नहीं माइंड कीता तां फिर थोनू की है, नाले खाना वेस्ट हुंदा। वेस्ट होण तों वधिया कि तुसी चलो एटलीस्ट खाना जिहड़ा वो डब्बियां च पा लो, नाल लै जो, फिर की हो गया। सो थोड़ा की ख्याल है, इंज खाना डब्बे च पा के घरे लैके जाना, डज इट लुक बैड या थोनू कोई इस चीज नाल कोई गलत नहीं लगता? नंबर है अपना 9056733337, 9056733337, 905-673-3337 अपना नंबर है, 9056733337। कॉल कर रहे हो, होल्ड ते रहो, थोड़ी कॉल ऑटोमैटिक होल्ड ते पाई जाऊगी ते वापस आके थोड़ी कॉल्स लेने हैं। नंबर है 9056733337। देखते हैं जे कोई थोड़े व्याह ते आके इंज करे तुसी माइंड करोगे? जे थोनू किसी ने सद्या तुसी कदे ऐ कीता नाल कंटेनर लै के भी चलो जी साढ़े अगले हफ्ते का लंच पैक हो जूगा, डिनर पैक हो जूगा, थोड़ी कुछ कॉल्स मैं जरूर लेना चाहवांगा। विल बी बैक।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब ते अमीर विरसे दी पुत्तल चों यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: ट्रक कारा लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहिंदियां की करां
1: मैं सुनिया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
2: पोंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
3: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
1: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
3: 905-459-5533
1: 905-459-5533 ते
3: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
4: समा देने लिए शुक्रिया जी तुहानू ते साडे सारे लिसनर्स नूं प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्ते ते आदाब मॉर्गेज रिलेटेड कोई भी इनक्वायरी अपने लिसनर दी कॉल कर सकते ने मेनू रशमीत कौर नूं 6475394499 जा गूगल कर सकते ने रशमीत कौर मॉर्गेज ब्रोकर गलबात करांगे जी अज डेट कंसोलिडेशन बारे डेट मतलब जेड़ा साडा कर्जा उन्नू कंसोलिडेट करना कट्ठा करना सो काफी बार की हुंदा है कि क्लाइंट्स ने वेरियस सोर्सेस तो पैसा चुकिया हुंदा है अपने क्रेडिट कार्ड्स हो गए लाइन ऑफ क्रेडिट हो गई जा होर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ते लोन हैगे ने उसदे नाल नाल कार लोन है ट्रक दी लीज हैगी है सो काफी बार वेख्या जांदा है कि असीं मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हुंदे आ मिनिमम पेमेंट मतलब सिर्फ ब्याज ही जा रहा हैगा साडा प्रिंसिपल जेड़ा एज इट इज पे है सो दसना चाहांगी अपने लिसनर्स नूं कि जे तुहाडे कोल घर है घर विच एक्विटी है ते तीन तरीकियां नाल नंबर एक रीफाइनेंस करके नंबर दो सिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट नंबर तीन प्राइवेट मॉर्गेज जा प्राइवेट लाइन ऑफ क्रेडिट दे नाल भी असी सारे जेड़े कर्जे हैं कठे करके अपने घर दे अगेंस्ट पा सकते हैं जिस नाल साड़ी पेमेंट जेड़ी है काफी घट जांदी है इस दे नाल नाल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जांदा है कि तुसी जेड़ा प्रिंसिपल दे वाल भी पैसे पाने शुरू कर देंदे है गे हमेशा एम्फसाइज कर दी हर क्लाइंट दी सिचुएशन जेड़ी है वक्री होंदी है ऑलवेज कॉल करो ए वेखन वास्ते कि तुहाडे वास्ते की ऑप्शंस अवेलेबल ने ते जिदा सी अकाल मॉर्गेजेस ते हमेशा कहने आ जैसी एक बारी तुहाडी फाइल रिव्यू करके हां कहती ते असीं हमेशा अपने वादे ते पूरा उतरांगे बहुती जानकारी लई डेट कंसोलिडेशन बारे जां होर किसे भी फाइनेंसिंग ऑप्शंस बारे कॉल कर सकदे हो मैनू रशमीत कौर नूं फ्रॉम अकाल मॉर्गेजेस
5: 6475399 6547534499
6: ਸਾਡੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ
7: ਹੋਏ ਸ਼ੰਮੀ ਭੱਠਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਹੱਲ
8: ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਸ਼ੰਮੀ ਭੱਠਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਘਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸ਼ੰਮੀ ਭੱਠਲ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-917-7763 416-917-7763

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

इंसानों की गलियों से, इंसानियत ना मिली इंसान ना मिला, इबादत के नाम के झंडे तो मिले, इबादत ना मिली भगवान ना मिला।

0: छह फुट दो इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
1: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
2: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन कोस टू कैनेडी एंड स्टील्स 905-451-2600-905-455-2600।
3: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी। ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हां ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए। सर्विस भी टॉप नॉच सी। टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी। करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी तां हुण हर फंक्शन लई तवा किचन ही चूज करांगे। Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
4: महंगाई के इस दौर में मैं पूछता हूँ भाई बहनों, क्या आपको $10 फॉर टू कोई दे पाएगा कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, खाना चाहोगे कि नहीं?
5: क्यों नहीं खाना चाहेंगे? तवा किचन दे रहा है ना, अमृतसरी कुलचा 2 for 10, बिरयानी 2 for 10, न्यूट्री कुलचा 2 for 10।
6: अरे बस बस, फोन नंबर और एड्रेस तो दो।
2: तवा किचन एट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स 905-455-2600 905-451-2600।
6: इतना ही नहीं, ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल और भी आइटम है $10 फॉर टू।
7: भैन जी, तीजा व्याह है कैनेडा दे विच, ना ही इंडिया वर्गा टेस्ट, ना ही इंडिया वर्गी क्वांटिटी। छोटिया छोटिया प्लेटा फड़ा देंदे ने, जदों दूजी बारी खाना लेन जाओ ते बफे खत्म हो जांदा है।
8: मैनू पता है क्यों, मैंने तवा किचन दी केटरिंग खादी सी। सच्ची कहां तां फूड इन्ना टेस्टी, अनलिमिटेड फूड, इन्ना फूड के मैं खांदे खांदे थक गई पर फूड नहीं मुक्या।
1: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटेन एश एंड बवेड़ा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699
9: हेलो जी, मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। मैं तवा किचन तो कैटरिंग करवाई सी। सच मनो स्वाद ही आ गया, गरम गरम फ्रेश फूड। अगर तुसी भी कैटरिंग करवानी है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगी तवा किचन नू। इना दी सर्विस एक्सीलेंट है, ताई ताई कहंदे ने टेस्ट ढाबे वर्गा ते प्रेपरेशन घर वर्गी।
1: 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटेन एश एंड बवेड़ा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699 TAWA Kitchen.ca।
9: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
10: ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਸਿਸ ਆਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬਨ 55 ਤੋਂ 60 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਾਓ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
1: ਤਵਾ ਕਿਚਨ 50 Sunnyvale Gate, Brampton, Mountain Ash and Bovedda Intersection, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 TAWA Kitchen.ca।
8: ਸਿਮਰਨ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਖੁੰਦੀ ਨਹੀਂ?
7: ਲੈ ਦੱਸ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਘਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ?
8: ਤਾਂ ਟਿਫਨ ਲਵਾ ਲਾ।
7: ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹਰੋਂ?
8: ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ?
7: ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ। ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਟਿਫਨ ਪੈਕੇਜਸ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇੱਕਦਮ ਲਾਜਵਾਬ।
1: 50 Sunnyvale Gate, Brampton, Mountain Ash and Bovedda Intersection, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699 TAWA।
11: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਆਊਟਕਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਅਰ ਫੇਅਰ ਡੀ ਰਿਅਲਟੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, 28 ਏਕਰ ਲੈਂਡ ਵਿਦ 2 ਰੋਡ ਫਰੰਟੇਜਸ, ਡਬਲ ਕਾਰ ਗਰਾਜ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 407-418 ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਫਾਰ ਬੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਾਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੀਮ, ਫੇਅਰ ਡੀ ਰਿਅਲਟੀ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫ ਰੈਕਡ ਹਰਦੀਪ ਪੰਦੇਰ, ਐਂਡ 905-671-2000 905

मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत ना कोई, करने हारा करदा आपे, जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडे सारयां दा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही प्यारे जे शो रेडियो आवाज़ चे। ते तुहाडा ते साडा साथ बनिया रहेगा पूरे सवेरे 10 बजे तक। ते तुसी सुनदे रहो तुहाडा प्यारा शो रेडियो आवाज़।

0: पहले अगर इंडिया जाना है तो आपको पहुंचना है जी ऑल लिंक ट्रेवल से कोमल जी के पास।
1: बिल्कुल सही बोला आपने कोमल जी, ऑल लिंक ट्रेवल्स तो सो डील्स लेके आया
0: जी।
1: टोरंटो टू दिल्ली जी, तो सी दिवाली मनानी है जाना इंडिया अक्टूबर ते नवंबर मंथ, वन वे टिकट इज $1,490 विद टू पीस ऑफ लगेजेस। सो कॉल पिक कर लेंदे आ पहला, बाकी डील्स नाल दे नाल असी दस्सदे आ ताकि सुनदे रहो तुसी शो। सो साडे नाल 22180 तुसी ऑन एयर हो जी।
2: हेलो हांजी, सत श्री अकाल संतोख जी।
1: सत श्री अकाल जी।
2: पवन जी सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, पंकज बोल रहा हूं।
2: हांजी हांजी
0: जी जी।
2: मेरा नाम रेखा है।
1: रेखा जी।
2: हांजी हांजी
1: जी, बहुत प्यारा नाम है रेखा जी।
2: तवा किचन एंड नजारा, पहला तो पासवर्ड।
1: आप रेखा जी पहला दसो, आप पहली बार कॉल कर रहे हो साडे स्टूडियो ते?
2: नहीं, सेकंड और थर्ड टाइम।
1: अच्छा, सेकंड और थर्ड टाइम। सो आप का डेट ऑफ बर्थ बताएं हमें।
2: हांजी, मेरी 3rd नवंबर।
1: थोड़ी 3rd नवंबर। रेखा जी, तुसी वी प्यारा सिंह जी दी लाइन चे हैगे हो और मेरी ते तुहाडी मैच कर रही है। सो चलो जी रिपीट कर दें फिर। तो तुसी बहुत इंटेलिजेंट हो। घर दे डिसीजंस कौन लैंदा है, तुसी लैंदे या तुहाडे हस्बैंड लैंदे आ? ऑथेंटिकेशन चाहिदी होगी कि वैलिडेशन कि तुसी ओके कर रहे हो। जे रेखा जी ने कहता नो, फिर नो हो जानी है।
0: लेकिन संतो जी, हर हर फैमिली में यही सिचुएशन है। होम मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बगैर सीएम डिसीजन नहीं।
1: बट पता है मेरे घर पे क्या होता है, मेरे हस्बैंड करन काम जिवे गेस्ट इनवाइट कर देंगे जी, मतलब जी, मुझे होता है कि संडे मेरे पास है, मैं रिलैक्स करा, किसी नहीं बुलाना। उन्होंने पता जे इन पुछ के मैं किसी बुलाया, इन्हें तो ना कर देनी
0: है।
1: इनविटेशन दे के रेखा जी फिर मैं दस दिया, संतोष संडे नु मेरा आहा फ्रेंड करे आ रहा है डिनर लिए, देख लेना की करना हूं। असि कुछ मैं उस टाइम सिचुएशन कुछ कर भी नहीं सकती। जी सो रेखा जी, तुसी बहुत इंटेलिजेंट हो और बट तुसी बहुत इमोशनल हो जाते हो। इमोशनल नहीं होना कोई गल नहीं, लाइफ से अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। सो रब दा नाम लेके और अपनी हिम्मत
2: नु इमोशनल
1: जी। सो मुश्किल हैगा है लेकिन कोई गल नहीं। सो कॉम्प्लीकेटेड करके रख दे तुसी भी अपनी लाइफ नु, ते गुस्सा तुहाडी नक दे उत्ते बैठा हुंदा। बैठा हुंदा कि नहीं बैठा हुंदा?
2: हां जी हां जी।
1: सो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा वैसे साडी चार्ट दे अकॉर्डिंग मोस्टली हुंदा ही आ। लेकिन पंकज जी, तुहानू पता है लाइफ च साडी सब तो ज्यादा साडा दुश्मन कौन है?
0: सबसे ज्यादा दुश्मन इमोशनल होना
1: है। जी, सब तो ज्यादा दुश्मन हुंदा है कि जो असि गुस्सा कर लेंदे और इमोशंस दे विच असि कुछ ऐदा दा कह दिंदे आ जो कि असि वापस नहीं लै सकदे। सो इस करके गुस्से दे विच हमेशा याद रखियो कि तुहाडी मुंह तो जो तुसी कढ रहे हो, जो जी तुहाडी गल्लां कर रहे हो, वो कुछ ऐदा दियां होण कि जिहदे नाल तुसी बाद च रिग्रैट ना करो। सो ऑलवेज अपने आप दे उत्ते थोड़ा जिहा कंट्रोल करके सानू सारे नूं रखना चाहिदा। मैं भी अपने आप नूं कहंदी आ, मैं नहीं कहंदी कि मैं 100% है, मैं भी 50% ही आ। सो मैं अपने लिए जो चीजां सोचदी आं कि जे अगला कोई कुछ बोल रहा है ते 2 मिनट बर्दाश्त कर लो, या कुछ बोलना है ते वधिया जी गल दसो, ये ना होवे ओ टिट बोल रहा है तुसी टैट बोल रहे हो। सो थैंक यू सो मच कॉल करन लई, उम्मीद करदी आं तुहाडा दिन बहुत ही प्यारा होए। सो साडे नाल नेक्स्ट कॉलर है गया पंकज जी, 0186 तुसी ऑन एयर हो। अमन जी चढ़दी कला चे, होपफुली मेनू लग रहा जी साडा शो भी शायद सुन रहे हो। लेकिन तुहानू सारे ने उन्होंने एक मैसेज है, सारे ने कहा कि मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा, उदो तक तुसी संतोष दा ते पंकज दा साथ निभांदे रहो, ए उन्हां दा मैसेज है। गुलाब जामुन किसी दिन आओ, तुहानू असीं तवा किचन दे गुलाब जामुन खा के देखियो, अमेजिंग बहुत टेस्टी हुंदे आ।
3: चलो ठीक है जी, ठीक है। चलो मैनू बाबे बगतौरा दा मैनू पता ही है, मैं पिछले वीक कीता सी
1: जी। अच्छा, तुसी बाबा बगतौरा नी वैसे ही वेलकम बैक करनी सी पंकज जी नू, ते सानू साडा हौसला वधाउण लई आए सीगे। पर्सनालिटी हो कि जिन्ना कोल भी हो गए खुश ही होणगे, होपफुली तुहाडी वाइफ तुहाडे तों खुश होणी। तो एक मैनू कॉल आई पंकज जी, और मेनू ओदे उपर एक शायरी याद आई। सो बोला मैं,
0: बोली बोली।
1: सो मेनू किसी ने कहा कि दीदी मेनू सारे हैरान वास्ते बैठे हुंदे आ,

0: तो याद रखे स्टार इमिग्रेशन,
1: स्टार इमिग्रेशन
0: कॉल 9054573131
1: स्टार इमिग्रेशन।
2: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लाके आ रहे हो ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लाके उन्होंने प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे। साड़ी अप्रूवल फास्ट ने, कवरेज तुहाडी नीड के मुताबिक है, ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा, ए सारा कुछ तुहानू मिल सकता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते। तुसी मैनू कॉल करो, एदे लई नंबर है 416-524-3535 416-524-3535 विधि छाबड़ा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस।
3: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियों लई खुशखबरी, हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तो

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: दोस्तों सत श्री अकाल नमस्कार आदाब
2: टोरंटो गेट रेडी पंजाबी विरसा रेडियो एंड टेलीविजन रियल्टर रव सिंह सेलुलर पॉइंट्स ए टू जेड किचन कैबिनेट एंड रियल्टर हार्प गरेवाल प्रेजेंट द

0: September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: मैं आ जा दो में नाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा, मैं आ जा दो में नाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
4: Toronto's number one station, AM 530.
5: Punjabi Versa!

हंस भाजी एक मिनट हंस भाजी एक सेकंड वेट करो थोड़ा रुक जाओ दो मिनट। लो जी ये फ्राइडे लंघ गए तो उस तो अगले फ्राइडे शो है 18 सितंबर नो ते जिहड़े साडियां फैमिलीज ने हल तक टिकटां नहीं लईयां टिकटां अपनियां राखवियां कर लो बहुत जल्दी असी अनाउंस कर दांगे शो सोल्ड आउट है क्योंकि टिकटां बहुत थोड़ियां रह गईयां हुण और ये शो देखण वाला होएगा। मैं ऑलवेज कहना हुंदा तुहानूं सारयां नूं जिहड़े शो चंगे आपां फैमिलीज बह के जिहड़ा शो दा आनंद माण सकदे आ जिस आर्टिस्ट ने अच्छा गाया है पंजाबी कम्यूनिटी वास्ते हिंदुस्तान कम्यूनिटी वास्ते जिन्नियां बड़ियां वड्डियां कम्यूनिटियां अपनियां सारे कम्यूनिटीज वास्ते गाया ते आपां नूं उस आर्टिस्ट दा साथ जरूर देना चाहिए ते उस वेले नहीं सानूं सोचना चाहिए भाई 100-200 डॉलर साडियां टिकटां लग जाना फिर एक माण हो जाता नाले उहदे साडा माण भी हुंदा कि भाई तुसीं पंजाबी विरसा दे सद्दे दे आए आ ते इह बड़ी वड्डी गल हुंदी है कि साडा माण भी तुसीं हो ते फिर साडा जिहड़ा माण तुसीं रखदे आ ते असीं वी तुहानूं वन सवन्ने गीत वन सवनियां गल्लां ते वन सवनियां तुहाडे नाल बिजनेसमैनां दीआं सारियां गल्लां शेयर करदे आ जिहदे तुहाडा फायदा हो सके जिहदे तुहाडी बचत हो सके। आ जे तुसीं 100 डॉलर दो टिकटां लै भी लईआं ना 100-200 दीआं ते तुहाडा मैं उदां ही किधर किधर फायदा करा देना एक इदां दी अनाउंसमेंट कर दूंगा कि उह हर बंदे नूं घर दे चीज़ दी लोड़ पैंदी है ग्रोसरी दी कहते मेरा मूड आ गया ना कहते मैं इंडियन फ्रूट लेना तो मैं आटे ही फ्री वंड देनी है पूरियां 2-4 सकड़ा पर उहदे च तुहाडा भी सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदा है कि मैं समझदा कि जे हंसराज हंस अपने शहर दे विच इस आउण वाली 18 तरीक नूं आ रहे है ते तुहाडे जे कोई 50-100 डॉलर लग गया ते मैं पीजे ही तुहानूं फ्री देना है फैमिली नूं तुहाडे पैसे कसर इदां ही पूरी कर देनी मैं किते ना किते ये देख लो आपां बंदे इदां दे ही आ सिद्धियां गल्लां करन वाले बंदे आ ते जे तुसीं कदे कोई पैसे एक्सपेंड करदे आ ते तुहाडा फायदा भी मैं ही करा दूं ठीक है ना वीरा जी। ते टिकटां ticketmaster.ca तों लै लो 18 तरीक हुण बहुत ही दूर नहीं क्योंकि अज हो गया दिन बुधवार ते कल वीरवार ते शुक्रवार ते फिर शनि ऐतवार ते उस तों अगले शुक्रवार नूं शाम नूं 7 बजे जिहड़ा थिएटर आए वाला तुसीं बिलीव करियो जिन्हां ने इत्थे शो नहीं देखे जिन्हां ने तां शो देखे आ इत्थे उन्हां नूं पता कि लिविंग आर्ट सेंटर किहो जी एक बनतर बनी हुई है थिएटर दी इह म्यूजिक दा स्पैशलिस्ट थिएटर बनिया है और इत्थे शो तुसीं बहुत घट सुने हुंदे आ और जिहड़े वधिया आर्टिस्ट हुंदे आ जिहड़े बहुत ही ज़्यादा सुर नूं प्यार करन वाले आर्टिस्ट हुंदे आ जिन्हां ने पूरी कौम वास्ते पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी गाया उस आर्टिस्ट वास्ते जिन्हां आर्टिस्ट ने धीआं कुक दे विच ना मारो उस आर्टिस्ट वास्ते थिएटर चुनिया गया सी हुण इह फैसला तुहाडे हथ दे विच है कि 1984 दे विच जां जिहने धीआं धिआणियां दे गीत गाए है उस आर्टिस्ट दा तुसीं साथ किन्ना कु दिंदे आ इह तुहाडे उत्ते डिपेंड आ मेरे उत्ते डिपेंड नहीं क्योंकि मेरा तां फर्ज़ आ मैसेज देना और मैं तुहानूं मैसेज दे रहा जिन्नी देर तक शो नहीं हुंदा और मैं तुहानूं मैसेज देंदे रहना शाम नूं तुसीं पंजाबी लहरां ते वी मैसेज सुनदे आ देश प्रदेश ते वी मैसेज सुनदे आ और इह सारे जिहड़े मैसेज आ तुहाडे परिवारां तक पहुँचाए जांदे आ इसे करके कि आपां उस आर्टिस्ट दा साथ देईए जिस आर्टिस्ट ने साडा साथ दित्ता जिस आर्टिस्ट ने उस नूं वर्दियां गोलियां दे विच इह गीत गा दित्ता पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी जिस आर्टिस्ट नूं पता नहीं सी कि मैनूं जिंदगी दा दूजा दिन देखण नूं मिलना ते नहीं मिलना उस आर्टिस्ट ने गीत गाता ते अज फिर तुहाडी वारी आई है उस आर्टिस्ट दा साथ देण लई टिकटां ticketmaster.ca तों राखवियां कर लो। जे समझदे आ इस आर्टिस्ट ने बहुत जंगा गाया इस आर्टिस्ट साडे परिवारां दा ख्याल रखिया ते फिर टिकटां ticketmaster.ca

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत देखी उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे
2: मैं आ जा तो मैं नाल नचिए नचिए बाहच बाहपा मैं आ जा तो मैं नाल नचिए
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 6474481000.

0: ट्रैकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, because we care.
1: अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते, ये मेरी समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या है। It's your problem. That's right, it's your problem. मॉर्गेज सॉल्यूशन दे गुरप्रीत सम्राजी, तुहाडे मकान दी रिन्यूअल आ रही है, तुसी अपनी मॉर्गेज बी सी लैंडर तो हटा के ए लैंडर नाल करवाउणी है और इंटरेस्ट रेट ते भी बचत करनी है। कॉल 905-460-9099। प्री अप्रूवल भी करवा के दिंदे हन तां कि कॉन्फिडेंस नाल मकान लै सकदे हो। 80-90 हज़ार बेस नूं बनाउण लई चाहीदे ने, मकान लैण वेले इस दा भी अरेंजमेंट कीता जांदा है। गुरप्रीत समरा नाल बैठ के डिस्कस करो। 2155 B स्टील्स एवन्यू नियर टॉप रूम यूनिट 32, 905-460-9099, 905-460-9099,
2: 460-9099 इन्हां दा नंबर है। चलो बच्चे, उदाहरण दे के स्पष्ट करो कि बाज दी निगाह तेज हुंदी है।
3: मैडम जी मैं दसा।
2: हाँ हाँ बेटा दसो।
3: मैडम जी बाज दी निगाह तेज हुंदी है, उदाहरण वजो बाज नू कदे भी ऐनक लाउंदे नहीं देखा गया
2: है।
4: I am Dave Tatla, and you are not.

0: हेलो
1: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
0: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
1: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी।
0: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो, बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने। ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
1: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग ले आज ही कॉल करो 9056781200 9056781200। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।

0: Friday, September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला ऐसी बड़ी मॉडल दिखती, उम्मीद कर रहा इस बार भी किसी आशीर्वाद दोगे।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो.
1: कोई Case Refuse हो गया या Appeal ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही कॉल करो, 456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई.
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तों ही करवाई है.
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तां सब तों वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानूं सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने. पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते.
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो. बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे. हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381.
5: ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਮ ਬੰਸਰਾ ਡਾਂਸ.
6: ਟੋਰਾਂਟੋ, ਗੈਟ ਰੈਡੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੀਅਲਟਰ ਰਵ ਸਿੰਘ, ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਏ ਟੂ ਜ਼ੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਐਂਡ ਰੀਅਲਟਰ ਹਰਪ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਸੈਂਸ.

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही माण महसूस हो रिहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475041557 6475045715।